थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासिय समाचार जेउ पेस पाखिन दिना दिसन थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिकु द षष्ठी सिन्धुलिया फिक्कल या सुना कुसी खुसी कार नाप तनाचो पि मनुतेगु मसिका पिहा वगुदु पेम तनाचोङ धासा तपी प्रहरी सोमजुगु पुष्टि यागुदु थौ सुते निसे मालिकु ज्या हाक्न याकुगुदु सिन्धु पाल्चोक जुगल गाउँपालिका या कार गम श्री गुदया दिल कुमार लामा ओ इस्का भेटर गइम सिन्धुलिया नि च्यातो दुम गणेश थापा ओ सिन्धुली तिन पाटन या सुरज मगर तनाचोगु प्रहरी धागु ख ये पाखे ओखल ढुका उनाचुङ्गु बस सडके त या तगु कार या त नकेव नेगु मिटर कुए खुसी कुटुङ्गु ख गण्डकी प्रदेशे आ वासय नीति छेले त गजी पी त कानुनी लपु चागुदो आ प्रदेश वास औद्योगिक प्रयोजन नीति गजी पी फैगु जुगु ख प्रदेश प्रमुख डेलीराज भट्ट छगु विधेयक मिग प्रमाण गर्ने यादुङ्गा थथे लपु चागु ख सरकार नि न्याद लिपा राष्ट्रिय यातायात नीति यात भिङ्का छेलपुला हगुदो पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय यातायात नीति 2083 जारी यागु ख पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल सार्वजनिक यातायात या त भिङ्केगु सडक सुरक्षा त ब्याकेगु लकस प्रविधि या त छेलेगु ओ डिजिटल प्रणाली या त ब्याकेको नीति बुगु नेतना दिल परराष्ट्र मन्त्रालय सहसचिव पुष्पराज भट्टराई या त जोङ्गुदो सहसचिव भट्टराई या त प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी पाखे मिगन हिनेसे इले गिरफ्तार यागु ख कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका पाखे सहसचिव भट्टराई या त गिरफ्तार यागु सिआइबी एसएसपी अनुपम शमशेर जबरा जानकारी ब्यादिको ख वेक या त राजधानी एन अन्तर्गत कसुरे गिरफ्तार यागु प्रहरी जानकारी बिगुदो विक्रम सम्बत 2068 साले परराष्ट्र मन्त्रालय सहसचिव भट्टराई न उगु एन अन्तर्गत कसुर यागु लुया वे ढुङ्का वेक या त नियन्त्रण कागु प्रहरी जानकारी बिगुदो भट्टराई विरुद्ध 2082 चैत्र जक मुद्दा दर्ता जुगु ख गिरफ्तारी लाम भट्टराई या त अदालतले ललहाएको तयारी प्रहरी याना चङ्गुदु सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा या मुज्या थौन हिनेसिया छता इले चोनी तेङ्गुदु मुज्या प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालु गोनेलाला छेपाङी चुइसे गिक विक्रम सम्मत 2083 साल साउनलाला छेपा चुइसे कु मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ना सूर्य मोक्तान प्रतिनिधि सभामा तिनीलाई साङ्री सांसद गदेश सुनसरी थिएन तराई मधेश्री ताबराङमा धार्मिक थिएन साम्प्रदायिक घटना खबरे रिताबरे आपिन मारी थिएन युल नाङ्री खाइबा तामान शान्ति तानालाबारी सरकार से गेलाबारी खामदोला विषय सुङबा मला तिनीलाई चिसाङ्री प्रतिपक्षी दललाई सांसद गदेश धनुसारी दिम्लोन सुधन गुरुङ सेलाबा गोर्चुइसे सोम सहमतिलाई ताम्री प्रश्न लबान सरकार से धर्म युल्ला संवैधानिक ताम नागरिकता थिएन धार्मिक गेन्दन गदे थिएन सम्बन्धित ताम्री खाजीबन गोर्गिक पक्ष थिएन चेकेन लाबा सहमति से निष्कर्षरी दोबारे आखाम विषय सुङबा हिन्ना सांसद गदेश सरकारलाई कमजोरी से तराई मधेश्री दान्ते दोनामा मेन्दो ब्ली मि शिवा घटना नैतिक जिम्मेवारी काइब्लोन थिएन दिम्लोन से किन दोबा थिएन घटनालाई निष्पक्ष छानबिन लाबारी आयोग सभारी मोहिजन लाबमला सांसद गदेश भारतीय मूल सुरक्षा बल एसएसबी से सुस्तारी खासै नेपाली हुर्बा धम्के लाबा थिएन भौतिक संरचनारी क्षति तान लाबा ताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्न लाबमला सांसद गदेश चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशक नियुक्त लाबारे आखाममा क्यालेन्डर अनुसार आयोग से तोक लाबा दुईरी परीक्षा सङ्गमारी आखाममा से लोभबोन थिएन अभिभावक से दुङ्गालङ्गाम सिटी बताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्न लाबमला चुनुन गुङ्ग्री प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ्री नुन काइब्लोन बालेन्द्र शाहसे संसदीय साथ सम्बन्धी पाङ ताम सच्चे लबरी माग्लबन प्रतिपक्ष दललाई सांसद गदेश विरोध लबमला चुनुन गुङ्ग्री लुइथेन चाबासे स्वच्छता ब्लोन निशा मेहता सही पहुँचला आधारी आतना मानलाबारी म्याङ तोपा याङतामला आधारी लुई सेवा किनमारी म्याङमा ठिम्सोबारी सरकार से गे लबन मुला विषय सुङ्क्षेप मुला प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ्री सांसद गदेश प्रश्न जवाफ दोन्सुबान ब्लोन मेहता से व्यक्तिगत पहुँचला आधारी मानलाबन खाबा ठिम्दा ब्याङ से सरकार से डिजिटल टिम लागुलासेल मला बिसे सुंक्षेप हिन्ना नर्मन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे राष्ट्र बैङ्क अझ सक्रिय थिएन उत्तरदायी सोबारे युल्ला थिम संशोधन लबारी खामदोला विषय सुङ्क्षेप मला प्रतिनिधि सभालाई नोर समितिलाई तिनी टिपेपछि साङ्री लेङमथान सिवान नर्मन डाक्टर वाग्लेसे सार्वजनिक गेन्दन गदेदा अझ प्रभावकारी थिएन उत्तरदायी सोबारी थिम संशोधन लबारी खामदोला विषय सुङ्क्षेप हिन्ना नेपाल राष्ट्र बैङ्क थिम 2058 दा संशोधन लबारी सोभा विधेयकलाई फेरि दफावार काठुइला सिवान नर्मन डाक्टर वाग्लेसे नेपाल डाङमा नर्थुम्री वित्तीय मौद्रिक टिम गिक थिएन अर्को डिक्वासे नर्बलन खाङ थिएन नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिक्स गेलाबारी खामतोला विषय सुङ्क्षेप हिन्ना सञ्चालक समितिलाई मुल्मी गदेला योग्यता सम्बन्धीलाई ठिमेन संशोधन मुला विषय नर्बलन डाक्टर वागले सुङ्क्षेप मुला थिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दा दिम ब्लोन खाङ नाङ्ने आङिन्ना काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङजाङलाई गेदिम्ने थान्साम ज्याबा तसेलम राङ बमुला विषय सुङ्क्षेप बमुला प्रतिनिधि सभालाई राज्य व्यवस्था थिएन सुशासन समितिलाई तिनी टिपछि साङ्ग्रे नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 थिम देपेन लागुलाबा सम्बन्धीलाई विधेयक 2083लाई फेरि सैद्धान्तिक थिएन दफावार काठुइलाबा गेखोरी बुकिन बा ताङ्री ब्लोन गौतम से राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दा काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङजाङलाई गे दिम्ने थान्साम ज्याबा तसेल मुला विषय सुङ्क्षेप हिन्ना 94 रिमठिम पर्यटन थिएन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्गराज पौडेल से पर्यटन थुम्ला विकास त व्यवस्थित सोबारी पर्यटन विधेयक दुई अनुसारलाई सोबारी खामदोला विषय सुङ्क्षेप मुला प्रतिनिधि सभा मुख्युल ब्रेलबा थिएन पर्यटन समितिलाई चिसाङ्री लिङमा थान्सिवान ब्लोन पौडेल से सोमदिङ आछा ड्राफ्ट लाबा पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभारी पेस तासे प्रतिनिधि सभारी खापा मुसाइनन् थिदा संशोधन लादबारी खामदोबा मराङमा मुला विषय सुङ्क्षेप हिन्ना उद्योग वाणिज्य थिएन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव से सोल झुबाई एलपी ग्यास बेनन गाडी बोलाबारी ब्लोन खाङ से दान्दे बाङ्लाबन खापा मुला विषय सुङ्क्षेप मुला उद्योग थिएन वाणिज्य गे थिएन उपभोक्ता हित समितिलाई तिनी सिंहदरबार टिपची साङ्री लेङ्मा थान्सिबान ब्लोन यादव से उपभोक्ता दा मियोरी थान्सी ग्यास आरेबा हिर्बा दा प्राथमिकता पिन्से ग्यास बोलाबारी दान्देला सरकार से के लाबन खापा मुला विषय सुङ्क्षेप हिन्ना चिसाङ्री सांसद गदेश ग्यासलाई अभाव रेमरेम तासिन टिबा संस्थागत थिएन कमजोरी तासिटिबासे एलपी ग्यास बोलाबा ग्यासलाई माग थिएन आपूर्ति लाबा ताम्री सन्तुलन आर्डिक बमराङमा चाहिँ ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ लाबा थिम लागु लाबारी खाम्दो बमराङमा मुला विषय सुङ्बा मुला
बागमती प्रदेश सरकार से छार सरकार सुबारी दान्दे दलगदे काठुइला बारी वाङबङमला नेकपा एमाले थिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा डिक्सी छार सरकार सुबारी सहमति लसिजिनमा से स्यान दलगदे थिन काठुइला बारी वाङबङहिन्ना सरकार सुबारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रो नेपाली पार्टी थिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी थिन काठुइला बनमुला बसे एमाले संसदीय दललाई गुबन एकलाल श्रेष्ठ से सुनसे बहिन्ना चुनुन गुङरी ग्रेनबोन इन्द्रबहादुर बानिया से बिनान दलगदे थिन काठुइला चिवान छार सरकार सुबारी स्पष्ट बहुमत छोन लबारी अथवा दान्तेमुबा काङ्ग्रेस गुबाङला सरकार दान समर्थन लबारी मैजेन लासुबमला युल्डी दान्दे ग्रेन ग्रेन नाम्ताई सिटी बासे युल्ला ग्रेन ग्रेन गोरङ्गा सडक ग्याम गदे नोङ सिटी बम्बला सडक विभागला सुङबोन शुभराज न्योपाने से ललितपुरला कान्ति लोकपथ याम्बुला सीतापाईला धार्के सडक ग्याम कोशी प्रदेशला मध्य पहाडी लोकमार्ग इलामला राजदुवाली रिमुबा मेची राजमार्ग नोङ बम्बला नोङमा सडक ग्याम सवारी विभाग से डोजर स्काभेटर लोडर राङबा उपकरण परिचालनला सिटी बम्बला प्रहरी से नोङमा सडक ग्यामला विकल्प रि स्यान वैकल्पिक ग्याम प्रयोगला बारे बिनादन मोइजनला बमला चुनाडुला से बिपी राजमार्गल खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक ग्यामरी सियोला ब्लिङ्यामा एन्सिङ यसला डुङ्यामा दोना चेकन सवारी साधन चेङबारी पिन्सिटी बमला कान्ति लोकपथलाई हेटौडा भीमफेदी बागमती ललितपुर सडक ग्यामरी मुना सवारी साधन चेङबारी का बमला विशान सिन्धुपाल्चोकला कोदारीरी डुइखामा थेथुमला अरणीको राजमार्ग ढुङ्गा मुला विषय प्रहरी से पाङ बमला मध्य पहाडी लोकमार्ग सिन्धुलीला फिक्कल गाउँपालिका यी नवलपुर रिमुबा सुनकोसी गान्धेरी ताइसी माबा मेन्दोसो मिथेन कार दान्देनुन माइबनमुला विषय प्रहरी से पाङबमुला सशस्त्र प्रहरी बल्ला विपद व्यवस्थापन बेस क्याम खुरकोटलाई गोताखोर टोली नेपाल प्रहरी थेन थेर्ला मिगादेसे तिनी सियो हेन्छन् सुनकोसी गान्धेरी माबा मा मिगादेदा माइबनमुला विषय प्रहरी से पाङबहिन्ना दुर्घटना रिप्रतासी सिन्धुपाल्चोक जोङ जुगल गाउँपालिका निस्ला सोमचुइसे कुदिङला निर्माण छुङखेन दिलकुमार लामा सिन्धुलीजोङ गोलान्जोर गाउँपालिका गिक्ला निचुइसे ब्रेडिङला इस्का भेटर ड्राइभर गणेश थापा थिन तिन पाटन गाउँपालिका कु डाँडा खर्क विवेक लाला चुइसे निस्दिङला सुजन बलम्पाखी मगर कार्ला छ्याम्री गन्धेरी ताइसे मापमला सुनसरीला देवानगंज गाउँपालिका सोम कप्तानगंज रि चुनुन साउन्डला चुइकुनु तब घटनारी गोली टासी घाइते तब रविन्द्र मेहताला याम्बुरी बान्ला बताङरी तिनी सिबमला देवानगंज गाउँपालिकाला चोहो बेचन प्रसाद मेहताला अनुसार गोली टासी घाइते तब मेहता दा विराटनगर रि मान्लाबारी आखामा लेछ स्यान मान्लाबारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल याम्बुरी रिफरला बमोबा रविन्द्र शिवले छ देवानगंज घटनारी शिव मि मेन्दो सोम छोबमला उसेम नेपाल सरकार से लोलोलो गोर निचुई से गिक युल्थे नियोगरी खाली मुबा ग्लेबोन नियुक्ति लबा प्रक्रिया थी बमला ग्लेबोन आरेबा गोर

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सरकार आर्थिक समृद्धि हासिल करबाक लक्ष्यके सङ्ग आगू बढ़ि रहल बतौलनि अछि। परराष्ट्र मन्त्रालयमे आर्थिक कूटनीतिक महाशाखाके आयोजनामे भेल कार्यक्रमके सम्बोधन करैत ओ आर्थिक समृद्धिक लेल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता व्यापार महत्वपूर्ण आधार रहल बतौलनि। मन्त्री खनाल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता व्यापारक क्षेत्रमे नेपालके सहभागिता आ लाभके थप विस्तार करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेपाल कम विकसित देशके हैसियतमे विभिन्न देशसँ शून्य भन्सार दरके सुविधा पवित आल आ एहिसँ अपेक्षित लाभ लेवल नहि सकल चर्च करैत परराष्ट्र मन्त्री खनाल विगतमे कतऽ कतऽ अवसर गेल एहि विषयमे समीक्षा करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। परराष्ट्र मन्त्री खनाल सभ क्षेत्रमे एकैबेर काज करऽ चाहलासँ सीमित स्रोत साधन सभ क्षेत्रमे परिचालन करलापर अपेक्षित परिणाम हासिल नहि भऽ सकबाक बतौलनि। परराष्ट्र मन्त्री खनाल आबके वैश्विक परिवेशमे राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्तिसँ जोड़ेलासँ एहिके मध्यनजर करैत नीति तथा योजना निर्माणके प्रभावकारी रूपमे कार्यान्वयन करबाक चाही बतौलनि। एहि अवसर पर पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञान चन्द्र आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा पूर्व राजदूत दीपक धिताल व्यापारके विषयमे अपन अपन कार्यपत्र प्रस्तुत कयने छलथि। परराष्ट्र मन्त्री खनाल दुनू प्रस्तुता प्रस्तुत कयने गहन तथा महत्वपूर्ण कार्यपत्रके लेल धन्यवाद देलनि। सङ्गे परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय दुनू प्रस्तुताके कार्यपत्र ज्ञानवर्धक आ महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी खाना बनबयवला एलपीजी ग्यासके आपूर्ति व्यवस्थापन करबाक लेल मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समितिके सिंहदरबारमे बैसल बैठकमे उद्योग मन्त्री कुमारी उपभोक्ताके हितके केन्द्रमे राखिकऽ अभावमे रहल नागरिकके प्राथमिकताके सङ्ग ग्यास उपलब्ध कराबऽ मन्त्रालय काज कऽ रहल बतौलनि। बैठकमे सांसदसभ ग्यासके अभाव बारम्बार दोहराब संस्थागत आ प्रणालीगत कमजोरी भेल बतबैत एलपीजी ग्यास वितरण माग आपूर्ति बीचके असन्तुलनके कारण पहिचान करऽ ग्यास सिलिण्डर ट्रैकिंग प्रणाली लागू करबाक बतौलनि। सांसद सब आवश्यकता से अधिक एलपीजी गैस आयात भेला से बाजार में अभाव देखा व्यवस्थापन के कमजोरी भेला से जनता के गैस के मूल वृद्धि के मार में पड़ नहीं देवाक लेल संबंधित निकाय जिम्मेवार बनबाक चाही पर जोर देलनि। एना सांसद सब तत्काल गैस वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाबा पेट्रोलियम पदार्थ के नियमन के लेल नीतिगत सुधार करबाक आवश्यक रहल बावजूदो बैठक में सरकार वाला सब एलपीजी गैस अभाव के समस्या समाधान करबाक लेल एलपीजी गैस के पाइपलाइन विस्तार के संभाव्यता अध्ययन आवश्यक रहल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता पहुँचक आधार पर निर्भर राइट टू हेल्थ के आधार पर स्वास्थ्य सेवा धरि पहुँच के व्यवस्था करबा लेल सरकार काज कर रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सांसद सब विभिन्न समय में उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री मेहता व्यक्तिगत पहुँचक आधार पर होवला उपचार के निरुत्साहित करबाक लेल सरकार डिजिटल तथा नीतिगत प्रणाली लागू कयने बतौलनि। मंत्री मेहता अखन 1269 फाइल सर्वदंश उपचार के लेल प्रयोग हुआ वाला एंटी स्नेक भेनम मौजदात रहल जानकारी देलनि। ओ अखन केंद्रीय स्टोर में 138, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केंद्र में 444, स्वास्थ्य कार्यालय समेत 222 सर्पदंश उपचार केंद्र में 465 का 1269 फाइल सर्पदंश उपचार के लिए उपयोग होबय वाला एंटी स्नेक भेनम मौजदात रहल बतौलनि। स्वास्थ्य मंत्री मेहता स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाबा अनुगमन में जोर देल गेल बतबैत विपन्न नागरिक के लिए सघन उपचार में पहुँच बढ़ाबा रोगी के चाप अधिक भेल अस्पताल सब में थप आईसीयू या बेड विस्तार करबा सन कार्यक्रम आगू बढ़ायल गेल बतौलनि। ओ विपन्न नागरिक के लिए दवाई उपचार कार्यक्रम अंतर्गत सूचीकृत आ 123 अस्पताल सँ नियमित हेमोडायलिसिस सेवा प्रवाह भऽ रहल आ डायलिसिस सेवा के प्रभावकारी बनाबा रोगी के चाप के आधार पर थप डायलिसिस मशीन उपलब्ध करेबाक तथा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत करबाक काज आगू बढ़ायल जेबाक बतौलनि। बीतल समय बाजार में देखल गेल एलपीजी गैस अभाव के समस्या समाधानक लेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में वृहत विचार विमर्श भेल अछि। मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की के अध्यक्षता में बैसल बैठक में बाजार में गैस अभाव होबाक कारण विश्लेषण करैत समाधानक लेल संबद्ध मंत्रालय विभाग गैस उद्योगी तथा व्यवसायी के भूमिका के संबंध में समीक्षा कयल गेल छल। विचार विमर्श के क्रम में व्यवसायी बाजार में हल्ला चलल जेहन गैस के अभाव नहीं रहल दावी कयलनि। पश्चिम एशिया के द्वंद पश्चात आपूर्ति सहज बनाबा सरकार 7.1 किलोग्राम के आधा सिलेंडर बिक्री वितरण करैत अयला पर पुनः 14.2 किलोग्राम के भरि के सिलेंडर देबय लगलाक बाद अचानक मांग बढ़ल व्यवसायी सबके कहब छलनि। पहले से अधिक गैस आयात भ रहल बावजूदो उपभोक्ता आवश्यकता से अधिक भंडारण कयला पर बाजार में
किछ चाप देखल गेल बतौलनि। बैठक से गैस आपूर्ति में समस्या देखल गेल जिला में वितरण प्रणाली के थप प्रभावकारी नियमित आ सहज बनाब सम्बन्ध निकाय बीच समन्वय आ व्यवस्थापन के तीव्रता देवाक निर्णय कलक अछि। अहिना आबय वाला दशई तथा पावन तिहार में होबला उच्च मांग के ध्यान में रखैत आबय वाला तीन महीना धरि प्रत्येक महीना 50,000 मैट्रिक टन से अधिक एलपीजी गैस आयात करबाक व्यवस्था मिलेबाक निर्णय सेहो भेल अछि। मुख्य सचिव कार्की गैस क्षेत्र के दीर्घकालीन समस्या समाधानक लेल सरकार वाला संग आबय वाला दिन में अलगे परामर्श जारी रहत से बतौलनि। विचार विमर्श में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुआरी, सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी, गृह मंत्रालय के सचिव सुरेश पंथी, नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल के संगे गैस उद्योगी कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्र राज पौडेल, अमित अग्रवाल, रुद्र प्रसाद कोइराला के उपस्थिति रहल छल। सड़क के क्षमता से अधिक भार लदने मालवाहक सवारी के कारण प्रमुख सड़क संरचना में अरबों टका के बराबर के क्षति पहुँचल। भार नियंत्रण प्रणाली प्रभावकारी बनल नहीं सकला से राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थानीय सड़क धरि तीव्र रूप से सड़क खराब होइत गेल जनाल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बर्दीवास के हिसाबे बीपी राजमार्ग, महेंद्र राजमार्ग, बर्दीवास जलेश्वर सड़क, शमशी गौशल्ला तथा जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क में ओवरलोड मालवाहक सवारी के चाप बढ़ित गेलाक बाद भार नियंत्रण अभियान के तीव्र बनाल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बर्दीवास के निरीक्षक बाबूराम कार्की के हिसाबे आर्थिक वर्ष 2082-83 में तोकल गेल क्षमता से अधिक भार लेने 31 मालवाहक सवारी साधन पर कार्रवाई कैल गेल। अहि सवारी से 7,97,554 जरिमाना वसूल कैल गेल ओ जानकारी दिलन। सड़क डिवीजन कार्यालय जनकपुर के डिवीजनल इंजीनियर दरोगा प्रसाद के हिसाबे मधेश के अधिकांश प्रमुख सड़क के भार वहन क्षमता 10.2 मैट्रिक टन मात्र रहल अछि। अहि सड़क में चल वाला मालवाहक सवारी 50 से लक 60 टन धरि सामान लदित आयल छल। हुनक हिसाबे तौल के आधार पर ढुआनी भाड़ा निर्धारण भेला से अधिक आमदनी के लोभ में चालक तथा व्यवसायी सड़क के भार क्षमता के व्यवस्था करत अत्यधिक सामान लोड करित आयल। एक प्रत्यक्ष असर सड़क पुल तथा कलभट में पड़ल अछि। अरबों टका खर्च क के निर्माण कैल गेल पूर्वाधार समय से पहिने ही क्षतिग्रस्त भ रहल अछि। पर्याप्त मनसूनी वर्षा नहीं भेला से महोत्तरी में अहि वर्ष सेहो धान रोपाई अपेक्षित गति लेब नहीं सकल। लंबा रौदी पश्चात सोम दिन भिनसर किछ वर्षा भेल बावजूदो धान खेती के लेल पर्याप्त नहीं भेल किसान सब के कहब छन। कृषि ज्ञान केंद्र महोत्तरी के हिसाबे जिला में रहल 40,000 हेक्टर धान खेती योग्य क्षेत्र मध्य रवि दिन धरि 30,000 हेक्टर अर्थात 74.77% क्षेत्र में मात्र रोपाई सम्पन्न भेल अछि। बाकी लगभग 10,000 हेक्टर क्षेत्र में अखनो रोपाई होबय नहि सकल अछि। गत वर्ष वर्षा के अभाव के कारण महोत्तरी के 24.66% जमीन बाँझ रहल छल। एहि वर्ष सेहो मौसम अनुकूल नहि भेला से ओहने अवस्था दोहरायत की एहन संकेत देखल गेल कृषक सब के कहब छन। समय में रोपाई होबय नहि सकला से उत्पादन घटबाक, उत्पादन लागत बढ़वाक तथा खाद्य सुरक्षा में सेहो चुनौती थपायल जेहन जोखिम बढ़वाक कृषि ज्ञान केंद्र जनौलक अछि। आब खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी मैच फिक्सिंग के आरोप में अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी के 8 वर्ष प्रतिबंध लगौलक। आईसीसी रेड्डी खेल भावना विपरीत मैच फिक्सिंग संगे भ्रष्टाचार विरोधी आचार संहिता के 3 प्रावधान उल्लंघन के निठहर करैत सब खेल में 8 वर्ष के प्रतिबंध रहल जनौलक। अहि आरोप वाहक सन 2025 के अबुधाबी T10 क्रिकेट लीग के क्रम में भेल घटना संग संबंधित रहल। इससे पहले गत वर्ष के नवंबर से रेड्डी के अनुसंधानक लेल अस्थायी रूप में निलंबन कैल गेल छल। गलती ठहर करत आईसीसी 8 वर्ष प्रतिबंध के कार्रवाई कलक। आईसीसी के हिसाबे अबुधाबी क्रिकेट लीग में रेड्डी एक वा एक से अधिक खेल के नतीजा, खेल के प्रगति व अन्य पक्ष के गैर कानूनी रूप में प्रभावित कने, दोसर खिलाड़ी के मैच फिक्सिंग में संलग्न होबा लेल प्रेरित कने, भ्रष्टाचार विरोधी अनुसंधान के क्रम में अपन मोबाइल फोन से अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण संदेश जानकारी के हटा कर अनुसंधान में विरोध कने उल्लेख रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका आ ईरान बीच वार्ता भ रहल वा नहीं भ रहल विषय में परस्पर विरोधी दावी भ रहल समय हरमुज जल घाटी में एक कार्गो जहाज अज्ञात प्रक्षेप्यास्त्र से आक्रमण कने रिपोर्ट सार्वजनिक भेल। घटना से विश्व के प्रमुख ऊर्जा व्यापार मार्ग मानल जाय वाला जलघाटी के सुरक्षा अमेरिका ईरान तनाव प्रति नया चिंता बढ़ल। बेलायत के समुद्री सुरक्षा निकाय यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन
सन्स के हिसाबे ओमान के अल खसाब से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रहल कार्गो जहाज के स्थानीय समय हिसाबे रात करीब 2 बजे अज्ञात प्रक्षेप्यास्त्र प्रहार केने छल। निकाय जहाज के नाम झंडा वा ओ में लेने सामान के संदर्भ में कोनो विवरण सार्वजनिक नहीं कल छ। अल खसाब पर्सियन खाड़ी के प्रवेश द्वार मानल जा वाला हरमुज जल घाटी नजदीक अवस्थित है। विश्व के अधिक परिणाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस यह मार्ग से लो जाए अलावा के काज होइत आयल जलमार्ग रणनीतिक रूप में अत्यंत संवेदनशील मानल जाते छ। फेब्रुअरी में अमेरिका ईरान युद्ध शुरू भेल एम्हर ईरान जलमार्ग होइत हो वाला जहाज आवागमन में अवरोध पहुँचबित आयल त अमेरिका ईरानी बंदरगाह पर नाकाबंदी कायम रखने छ जैके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित होइत आयल छ। अही बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोम दिन ईरान संग युद्ध अंत के लिए वार्ता पुनः शुरू भेल दावी कलन हुनक हिसाबे कतार सऊदी अरेबिया आ संयुक्त अरब एमिरेट्स के आग्रह पश्चात अमेरिका कूटनीतिक प्रयास के निरंतरता देवल तैयार भेल अछि। ट्रंप ईरान सार्वजनिक रूप में अस्वीकार केने दुनू पक्ष बीच संवाद जारी रहल बतौलन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गैस की कमी की समस्या का तत्काल समाधान करने की संसदीय समिति ने सांसदों की मांग। गैस आपूर्ति प्रभावित जिलों में वितरण व्यवस्था को गैर प्रभावी बनाने का और प्रभावी बनाने का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुदूर पश्चिम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपा के सांसदों के साथ की चर्चा। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को फिर से संचालन में लाने की तैयारी। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सुदूर पश्चिम प्रदेश से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा ने सांसदों ने सरकार के अच्छे कार्यों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान सांसदों ने सुशासन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों से जनता को कराने के उद्देश्य से वे संसद के माध्यम से इन कार्यों की जानकारी देंगे। बैठक में सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे। प्रतिनिधि सभा में भूमिहीन सुकुम्बासी और अव्यवस्थित बसोवासियों के संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़े अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने कहा कि वास्तविक भूमिहीन और सुकुम्बासी नागरिकों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इन प्रस्ताव का समर्थन नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक एन बहादुर मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टी के मुख्य सचेतक आर एन राय ने किया। चर्चा में सांसदों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त तैयारी के बिना सुकुम्बासी बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने लोगों के जीवन और भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने वास्तविक सुकुम्बासियों की पहचान, सुरक्षित आवास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लाल पुर्जा वितरण की मांग की। सरकार से प्रत्येक 15 दिन में संसदीय समिति को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का तथा समस्या का समाधान होने तक हर माह सदन को जानकारी देने की मांग की गई। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों की मंत्री सोभिता गौतम ने आदिवासी जनजाति आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की छठी वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की। सांसदों ने सुनसरी तथा तराई मधेश में हाल में हुई धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से दीर्घकालीन शांति स्थापना की रणनीति अपनाने तथा नागरिकों के मन में व्याप्त भय दूर करने के लिए विशेष पहल करने की मांग की है। आज की प्रतिनिधि सभा बैठक में विपक्षी सांसदों ने धनुषा में गृह मंत्री सुदन गुरुंग द्वारा किए गए 13 सूत्रीय समझौते पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि धर्म राज्य के संवैधानिक स्वरूप, नागरिकता और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर केवल एक पक्ष के साथ समझौता कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सांसदों ने तराई मधेश की हिंसा में 4 नागरिकों की मृत्यु के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने तथा घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक विश्वसनीय आयोग गठित करने की मांग की। बैठक में सांसदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB ने सुस्ता क्षेत्र में नेपाली सीमा के भीतर प्रवेश कर नेपाली नागरिकों को धमकाया तथा भौतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस मामले में सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं उपभोक्ता हित समिति ने देश भर विशेषकर काठमांडू उपत्यका में LPG गैस की कमी पर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल समस्या का समाधान करने की मांग की है। समिति के सभापति रहवर अंसारी ने घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग अलग गैस वितरण व्यवस्था लागू करने तथा गैस सिलेंडरों का वैज्ञानिक आधार पर मैपिंग करने की आवश्यकता बताई। उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी ने कहा कि मंत्रालय गैस आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं मंत्रालय के सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाड़ी ने विश्वास जताया कि कुछ ही दिनों में गैस की कमी दूर हो जाएगी। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के पूर्व व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक 2083 को बहुमत से पारित कर दिया। समिति ने विपक्ष के उस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के बजाय गृह मंत्रालय के अधीन रखने की मांग की गई थी। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने कहा कि विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखने से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रभावी संकलन संभव होगा। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि विदेश मंत्रालय देश केंद्रित रणनीतिक कार्य योजना तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। आज विदेश मंत्रालय में आयोजित मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति MDSC की बैठक में उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना के निर्माण के लिए मंत्रालय के विभिन्न महाशाखाएं सक्रिय रूप से काम कर रही है। विदेश मंत्री खनाल ने कहा द्विपक्षीय रणनीति को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि सरकार आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज परराष्ट्र मंत्रालय में आर्थिक कूटनीतिक महाशाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और व्यापार महत्वपूर्ण आधार है। कुछ दिन पहले हुई झड़प और तनाव के कारण अत्यंत संवेदनशील बने सुनसरी जिले की भुकराहा नरसिंह गांव पालिका में आज सामाजिक सद्भाव बनाए रखें के नारे के साथ सर्वदलीय शांति एवं सद्भाव रैली निकाली गई। हालिया घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी। रैली का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करने का संदेश देना था। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। अब तक विमानस्थल के पुनर्निर्माण का लगभग 77% कार्य पूरा हो चुका है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौड़ेल ने कुछ दिन पहले निर्माणाधीन विमानस्थल का निरीक्षण कर शेष पूर्वाधार का काम समय पर पूरा कर इसे जल्द संचालन में लाने की प्रतिबद्धता जताई। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने दांग की गढ़वा गांव पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष सहज राम अहिर सहित 5 लोगों के खिलाफ राजस्व की हानि पहुंचाकर भ्रष्टाचार करने के आरोप में आज काठमांडू स्थित विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग ने सहज राम अहिर समेत 5 व्यक्तियों और शगुन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राली बुटवल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। देश में बाढ़, भूस्खलन और अन्य मानसूनी आपदाओं के कारण 5 प्रमुख सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। सड़क विभाग के प्रवक्ता शुभराज न्योपाने ने बताया कि ललितपुर के कांति लोकपथ, काठमांडू के सीता पाइला धार के सड़क खंड, भोजपुर स्थित मध्य पहाड़ी लोकमार्ग और इलाम के मेची राजमार्ग सहित 5 सड़कें लगातार बारिश के कारण बंद है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वायत्त जिले के कवाल क्षेत्र में एक पुलिस थाने के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस हमले में 34 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस थाने के निकट बड़ी संख्या में लोग आतंकवाद के विरोध में आयोजित एक शांति रैली में शामिल थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 7 पुलिसकर्मी, 10 नागरिक और हमलावर शामिल है। घायलों को स्वायत्त के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गैस की कमी की समस्या का तत्काल समाधान करने की संसदीय समिति में सांसदों की मांग। गैस आपूर्ति प्रभावित जिलों में वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुदूर पश्चिम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपा के सांसदों के साथ की चर्चा। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को फिर से संचालन में लाने की तैयारी और पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
6: *14#डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।